दुर्गाए नमः, ॐ क्रीं दुर्गाए नमः, ॐ क्रीं दुर्गाए, ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः, ॐ क्रीं दुर्गाए नमः, ॐ क्रीं दुर्गाए, ॐ क्रीं दुर्गाए, ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः, ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः, ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः।

0: ओम भूर्भुवस्व
1: ओम भूर्भुवस्व
0: तत्सवितुर्वरेण्यम
1: तत्सवितुर्वरेण्यम
0: भर्गो देवस्य धीमहि
1: भर्गो देवस्य धीमहि
0: धियो योन प्रचोदयात्।

दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा।